0: The Daily Scoop.
1: Music and feel good vibes here on the drive by. That was Abjad Sakoi, Zahra Khan, and Altamish Farid. Before that, Chamak Cello and the Nagara song bring us up to Daily Scoop. So guys, if you miss Pati Patni or Vodo in cinemas, you can now watch it from the comfort of your home. The film begins streaming today, directed by Mudassar Aziz. The comedy stars Ayushman Khurrana, Sara Ali Khan, Raku Preet Singh, and Wamika Gavi. Here we go. Here's your trailer.
2: Guru Bachchan Sahab ke shahar se hain hum. Aadmi shishtachari hain, pati aagyakari hain, aur to aur van vibhag mein varishth adhikari hain. Samasya? Abe hamare jeevan mein kahan se aayegi samasya? Keep calm, babe.
3: घर पिंजरा लगता है आपको?
4: पति ने खुद को जानवर का जीव बोल के घर को पिंजरा का जीव पकड़ लिया।
2: अरे चंचल कुमारी साइको ऑनर शहर इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया लॉन्ग टाइम कैसी हो तुम?
3: खातून कौन थी? Who was the lady?
2: Actually, वो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है, domestic violence.
3: तो पुलिस में जाती वन विभाग में क्या करने आई थी? इस हर पति एनिमल.
2: कल तक पत्नी को कॉन्फिडेंस में लेके सब कार्य कर रहे थे, डर नहीं था किसी टाइप का. अचानक घबराहट होने लगी.
5: कैसे हैं आप दामाद जी?
6: कौन दामाद जी भाई?
5: चंचल को आपकी गोद में देखकर आत्मा तृप्त हो गई हमारी.
1: So speaking at the trailer launch, Khurrana addressed questions about whether the film promotes infidelity. He said the story is actually about the misunderstandings and complicated situations involving the four main characters, rather than glorifying cheating. Interesting. Definitely one that you can check out in the comfort of your own home. Coming up in just a bit is a weather heads up for Saturday. Here's Krish.